क्या वजह? कोई वजह नहीं, बस मेरे वालिदैन ने शादी कर ली, मैंने कर ली तुमसे। उस बीवी के घर में सिर्फ एक खादमा जैसी है, वो हैसियत है। या अपनी हाजत पूरी करने के लिए बस, उससे कभी मुस्कुराकर बात करना, उसके साथ बैठना, उसकी जरूरत को पूरा करना, उसे किसी चीज की हाजत है, उसे कोई चीज पसंद है, वो आपसे कुछ कहना चाहती हूं, क्या इतनी काफी नहीं कि उसने अपने प्यारों को, अपने घर वालों को छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए? क्या ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? उसने पूरी दुनिया में इसे सबको छोड़कर तुम्हें पसंद किया है। इतनी कुर्बानियों के बाद भी क्या उसका हक नहीं है कि कम से कम उससे मुस्कुराकर तो बात करें? अगली सूरत, बाज बीवियां तकब्बुर करती हैं। और जिस घर में बीवी तकब्बुर करे वो घर जहन्नुम बन जाता है, याद रखें। और बीवी से जो तकब्बुर होता है उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। यह भी तकब्बुर में शामिल है कि कोई बीवी अपने शोहर को अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरा करने के लिए मजबूर कर दे। हर वक्त फुलान के पास वो है मेरे पास नहीं, फुलान के पास ये है मेरे पास नहीं है, तुमने मेरे लिए अभी तक किया क्या है? ये जो लफ्ज है ना, आज तक तुमने मेरे लिए किया क्या है, ये तकब्बुर है। और यही वजह है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें हैं, क्योंकि वो अपने खावन की नाशुक्री है। बाज बीवियां अपने बच्चों पर जबर करती हैं। मां है और मां तो रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से इस जमीन के ऊपर बहुत से रहमतें हैं, एक रहमत की शक्ल मां की है। लेकिन बाज मां ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों पर सख्ती कर करके, जबर कर करके बच्चों की हालत को बिगाड़ देती हैं। फिर यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर मुआशरे के लिए मुसीबत बन जाते हैं, नफ्सियाती बीमारियों से भरे होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको सिवाय गाली और तकलीफ का कुछ मिला नहीं अपने घर से। मां जब भी बुलाती है तो उसका वो निकनेम जो सबसे बुरा है, अब जरा गौर करें, हमारे घर में निकनेम्स भी चलते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। और अक्सर औकात क्योंकि घर के काम ज्यादा होते हैं तो गुस्सा भी ज्यादा होता है। जब भी बच्चों को बुलाना है तो उसके बुरे निकनेम से, अब जरा बच्चों की शक्ल देखें, जब उसे बुरे निकनेम से बुलाया जाए तो बच्चे की शक्ल देखा करें, वो बेचारा आधा मर जाता है, क्योंकि दूसरे बच्चे सुनते हैं वो हंसते हैं। इस उम्र में बच्चे जब दूसरों को देखना हंसता हुआ, ये समझे क्योंकि वो बच्चा अब इस दुनिया में, इस दुनिया से खत्म हो चुका है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अल्लाह को शुक्र है कि इस मरहले में वो जल्दी भूल जाता है और दिल का वो साफ है। देखना भूल जो है ना, भूल ये भी एक नेमत है, हम भूल जाते हैं। और बच्चों के दिल क्योंकि शीशे की तरफ साफ और शफाफ है, वो दिल पे नहीं रखते। इसलिए तरबियत के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों की तरबियत सही करनी है, सबसे पहला मरहला जो है वो अपने बच्चों से दोस्ती करना। अजीब सा मरहला है, सबसे पहले अपने और बच्चों के बीच में दोस्ती की ब्रिज कायम करना है।

वो कभी पा नहीं सकता। अगर कोई पा सकता तो वो अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। अपनी अकल खुद हिकमत के एतबार से पूरी कौम गवाही देती है, बाहर के लोग भी गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत वाले, सादिक है, अमीन है, सब खूबियां शामिल हो चुकी हैं, जमाल और कमाल के मालिक है। इसके बावजूद भी एक चीज की तलाश में थे, इस कायनात को किसने पैदा किया है, हमें किसने पैदा किया है, सवालात हैं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरे रब ने मुझे क्यों पैदा किया है, दुनिया में करना क्या है, ये लोग जो कर रहे हैं ये अच्छा तो नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है, आखिर वजह क्या है। सवालात के जवाबात नहीं थे, गौर फिक्र के लिए गार हरा की तरफ जाते थे, मुराकबे के लिए नहीं जाते थे। बाज जाहिल लोग कहते कि मुराकबे की जो असल दलील है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लम जाते थे गार है मुराकबा करने के लिए। मुराकबे से मुराद जैसे कि बाज लोगों के नजदीक ये अकीदा है कि खास तरीके से बैठकर अपने सर दोनों घुटनों के बीच में देकर इंसान गैब को कश्फ करने की तलाश में होता है, मुगैबात को कश्फ करने की तलाश करता है, और फिर वो खास तरीका अपना अपना कर अपने दिलो दिमाग से पूरी दुनिया से निकल कर सिर्फ एक ही चीज को अपने सामने रख कर, चाहे वो उसका शेख हो, चाहे उसका पीर हो, चाहे उसका कोई भी हो, उसी की तरफ मुकम्मल तवज्जो देकर अगर वो ये काम करता है तो फिर उसके लिए कोई चीज मुनकशिफ हो जाती है। और बाज ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही को यानी अपने जहन और दिलो दिमाग में रखना, बाकी दुनिया सबको छोड़ देना है तो कोई जो गैब चीज़ें या गायब चीज़ें वो किसके मुनकशिफ हो जाती है, कशफुल गुयूब। बाज लोग कब्रों के पास जाते हैं और कशफ कबूर का अकीदा रखते हैं कि जो कुछ कब्र में हो रहा है, बाज लोग ये जान सकते हैं कि इस कब्र वाले के साथ क्या हो रहा है। सुभानअल्लाह, ये तरीका ना तो किसी सहाबी का था और ना ही अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने फरमाया, एक हदीस में आया है कि दो कब्रों के बीच में गुजरते हुए पता चला दो कब्रों वालों के साथ क्या हो रहा है। कैसे पता चला? मुराकबे से पता चला। बैठ जाते मुराकबे में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुराकबे बाद फरमाते फिर क्या हो रहा है कब्रों में, वही के जरिए ये मालूम हुआ कि इन दोनों कब्रों के साथ जो है क्या हो रहा है। युअज़्ज़बान, दोनों को अज़ाब मिल रहा है। मा युअज़्ज़बान फी कबीर, लोगों ने जो बड़ी बातें नहीं है जिनकी वजह से अज़ाब दिया जा रहा है। इनमें से एक ऐसा शख्स था जो चुगलखोर था, चुगलखोरी करता था, दूसरा वो शख्स है जो इस्तंजा करते हुए सही तरीके से इस्तंजा नहीं करता, ला इस्तंजू मिन अल-बौल, पेशाब करते वक्त सफाई का एहतमाम नहीं करता था। ये मुराकबे से कशफ़ुल क़ुबूर के तरीके से नहीं हुआ, ये वही है जो रब जलाल सुभान व तआला की तरफ से आई है। अलगर्ज तो ग़ार हिरा में गौर व फिक्र था, कायनात में आप देखें ऊंची जगह पर आप बैठे हैं छोटे से गार में, आप आसमान की तरफ देखते हैं, इस अजीम वसी आसमान को किसने पैदा किया है, इस बड़े आसमान को किसने पैदा किया है, रब इससे बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो खालिक है, हमें रब ने पैदा तो किया है, वो कौन है, वो कहाँ है, उसके अस्मा व सिफात कैसे हैं। तो गौर फिक्र करते करते अचानक से रुया सालिहा, नबुव्वत की जो इब्तिदा हुई वो सच्चे ख्वाबों से हुई। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते, सुबह उठते वही होता जो रात ख्वाब में देखा था, रुयतु सालिहा। और जगह से गुजरते तो एक पत्थर था जो सलाम भेजा था अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये इब्तिदा थी नबुव्वत की। फिर वक्त मुकर्रर पर इन सवालों के जवाबात के लिए अल्लाह ताला ने अपने सबसे अज़ीम फरिश्ते को जो वही लेके नाज़िल होते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम पर, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, नाजिल हुए और सबसे पहला पैगाम लेकर आए